सूर्य नक्षत्र जब रहेगा वहाँ निकट समय आती संपत्ति सूची का अनुसंधान विभाग छानबीन थाली विभाग हिजो जब रहेगा निकट देखिएगा पांच व्यक्ति को घर में खान तलाशी समेत विभाग ने जब रहेगा भाई प्रभु शमशेर और पूर्व देहाती सन्यवराज थपलिया सहित का नारायण दाल दीपक तीन सेना नवीन राज उपस्थित को घर में छापा समेत हाने को खबर में उल्लेख। त्यस्तै भित्र पृष्ठमा गण्डकी सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपाल प्रशासन वित्तीय कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदंश अनुसन्धान केन्द्र

0: इच्छा गोरखपुर को प्रार्थना धन मांगना खाता दिखाना संतान के स्वभाव अपने तरीके से आ रहा है।
1: शिवराज
0: को पूर्व करती सरकार में छापा पैंतालीस दिन से बारह

काय करते तुम्हाला कुठलं केलं जातो काय चौथी घरे राहते इमोशनल एक्सेप्टो तो काय करतो म्हणती घरी अच्छे तिथे काही करून ते झुंजी पुढील ध्यान सहन अपना सपना पहले तक लेकर उसके के कसे खत्म जिसका मन वो धान खत्म जिसका काटो अब काट कर कहीं खाने के बाद तीन काम कई चुकी के धान में से ही रखी तो पर कठिन का खा हाथ को मरे पिरा के हाथ को गला के करा के एकदम हमने रोटली कोटली पैठली चेतो लगेली पनेली लिखेली तब वो अपने झुंझी पुझी भगवान दे जाते कलर करते

0: चाहिए तो प्रसारण संध्या 5 बजे मौसम बुलेटिन और साढ़े 5 बजे जानकारी तिमी नगरसम हावला झुल्ला थानाद्वारा सोमवार कार्यक्रम खाने मौका सहित कमाएदेखि पराजिटिभ पोखेटोमा
1: खेतमा पानी जमाउन समस्याहरू

0: समाज को बजे खाना संदेश में अपने स्वागत का सक्रिय हिंदू संघ
1: जिला प्राधिकरण ने प्रत्याक अनुसार
0: सन् पाँचपुरी नगरपालिका चार मटेरिया चोक कलङ्का पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सिंहपुर खटाउ र तर्गाउँ वृद्ध र उद्धव केन्द्र रुखाकटार पाँच र राजमार्ग सञ्चालनमा र परिचय लगाएको सिंहठाको बाबा नगरपालिका नम्बर 38 वर्षे टिकाराम थारूक एक तलाका कच्चे घरमा रूपमा घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त निर्माण ठाकुर बाबा नगरपालिका पाँच सायपुर स्थित शारदा आधारभूत विद्यालयका दक्षिण वर्ग करिब 50 मिटर नमा इट्टा सिमेन्टको चालिने पर्लक पर्खाल समेत भस्कर्दा मधुबा नगरपालिका शहर बेलुवा चौक स्थित खुराकी सडक खण्डमा आँधीका कारण सडकुल गर्भको सडक पूर्ण रूपमा उत्तर विद्युतका पुलमा जडान फेरि पेट्रो सिसी क्यामेरा समेत क्षति पुरी चलेका रुखाउ पुल हटाएर बाँच सडक पुनः सञ्चालनमा र ठाकुरबाबा नगरपालिका आठ रुपैयाँका करिब 40 वर्षीय रामकृष्ण थालको गुठामा साधनको रूपमा थालको गुठाको सर्दा घटनामा टेन्टो छेब्री मोलबाट बसे खाट ओ साइकल मुख्य क्षति पूर्वक पकडी चलेबाट निर्वाचन पालिका पाँच खुल्ला गाउँ अनि सुनारका करिब 25,000 रुपियाँ मूल्य पर्न कुरु गराउँदा सामुदायिक समूहमा चर्चित अवस्थामा पाँच नकलका क्रम नगरपालिका दस पहाडी पूर्व करिब 54 वर्षे किरण थारूको कोठामा बाँधल बच्चा महिना पैसिनियर समेत बाँच मार्फत गुलरिया नगरपालिका एक अरविन्द कुमार यादवको घर पन्नमा बाँधल रत पैसिनियाको उप सिन्याको घटना स्थलमा ज्यानतिलक जनाइएका उसैको मुटुको नगरपालिका दुई सुन्दरपुरका पञ्चराम थारू सर्कुन सामुदायिक पूर्वमा वर्ष पिठो जनाइएका तीन दिन आजसम्म रहर छुलक धान रोपाला सोमारको उपासहितको पानीले बडा क्षति पुगेका पक्रा तथा खोप्न तयारीमा प्रबल थान थलाइ भाष किसानको क्षति पूर्वबाट खेतमा पानी जमेर थलक थान चाल समेत समस्या विभाजन सुनि सकिया विद्युत चौधरी एक रिपोर्ट
1: खतम हुँदै मेरो पानी जम्मा छ होला हाम्रो मल्ल लगातार गरिब मलाई नकुस जब के मन लगाए थे नीम के मन है मिलट जब के नीम के लगाए तो अब जब मैं पानी डूब गई सब पूरा भरला पानी ना निकलना हो या कच्चे कच्चे धान गाव है अब काटे वाला ना तो काट के नहीं लेती अब काटे काटे वाला ना वो कच्चे धान गिर गिरा हमारे के बड़ा समस्या रहा हमारे का खाव बुझे दुबक के बाटे हमारे कृषि पर निर्भर किसान का राज धान बारी आमदनी का मुख्य स्रोत हो बारी का खेती पुगल बाज वर्ष भरी खर्च कसी का जुटे न करा चेतन की हाथ पर मो बड़ा बाज चाहे चाहे चाहे जुटे न गया मो मौसम पति के जीवियर किसानों का उत्पादन आमदनी दुर्मा जोखिम व्यवहार पर बाज बिंदु चौधरी तो दवाई थी प्रस्तावी
2: Thank you.

प्रश्न उठेको छ कि लेख आएन पशु पक्षी एवं भौतिक संरचनालाई मात्र क्षति पुर्याएन समग्र हिमाली सभ्यतालाई गम्भीर असर